का एफ एम कौआ वलंगवे पंगम तनु कुछ आउंगा प्रोग्राम को सब जिसे का के रादू के कवे तू का कई से पंगम कोई कई को रादू के निमुरु या उन्हें तें सेवा पेन नेखा एफ एम मन तो तू कोई आउंगा वलंग जी चांग को सांची में का के प्रोग्राम को कोना के कवे तू का कई से पंगम को सी दे वलंग जी चांग तनु कोई मार तमु अलग का प्रोग्राम मन तो तू कोई आउंगा वलंग वा उनको ऐसा के माउंगा मासो तें तू ताऊंगा वा ओला